0: आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के।
1: नमस्कार नगरकर, मी प्रवीण कदम, तुम्ही ऐकत आहात बदलत्या नगरचे लोकमाध्यम रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: रेडियो नगर 90.4 एफएम आवाज सुनता।
1: तुम्ही ऐकत आहात नगर डायरी, फक्त रेडियो नगर 90.4 एफएम वर।

0: खूब है।
1: मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम से कुछ हो जाए।